0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
2: Sound check. Solu FM. Studio time.
3: It's 7 a.m. Bihanako 7 baje.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: Ai, o rádio no sono é tempo.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sony FM, studio time.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंडू